0: सच कह जे होंगा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच
2: मिट्टी चुगदी फसल सच
1: गुरु दी पानी सच सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह
3: हसदे गाउंदे मुस्कुराउंदे चेहरियां दी पहचान रेडियो उड़ान गल्लां गीत ते किस्से कहानियां दी उड़ान रेडियो उड़ान ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਾਨ ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ ਆਜੋ ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਫਲ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल एनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 चो।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब .ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Swing into golf season with AM 530 at the MITPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Many Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fees support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MITPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ट्राई करो। स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, टिक्कियां, समोसे, भल्ले, डोसे, गर्मा गर्म जलेबियां सारा दिन अवेलेबल हुंदियां ने। टिफिन तुसी लगवाना है, घर केटरिंग करवानी है, लाइव तुहाडे कोई फंक्शन है, कोई तुसी हाल बुक करवाना है, हर एक सर्विस इन्हां नूं तुहानूं मिल सकती है। फोन करके किसी किस्म की जानकारी तुसी लेनी हो लै सकते हो। 905-450-33-33-114 कैनेडी रोड का नंबर और पथूरिया साहब का नंबर है 416-791-100। इन्हां तों भी तुहानूं किसी किस्म की जानकारी तुसी लेनी हो तुहानूं मिल सकती है। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल।
1: सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। घट उम्र विच मिलिया सुख मनुख नूं कदे समझदार नहीं बनन दिंदा,
0: बिल्कुल,
1: पर घट उम्र विच मिलिया दुख उसनों उस्ताद जरूर बना दिंदा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। गुरबाणी दे विच लिखिया है कि सुख दार दुख दारू सुख रोग पिया।
1: हां जी,
0: दुख दारू सुख रोग पिया। दुख तुहानू सुख नू बर्दाश्त करना सिखाउंदा है, सुख तुहानू अवेसले कर दिंदा, ओह तो तुहानू दुखी कर दिंदा। बिल्कुल।
1: हुण उस्ताद थोड़ा कहूगा मैनूं रिवर्स कर दो।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। सो दोस्तो, तुसी भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जिंदगी सानू जेड़ी मिली है ये इको एक है, इस नू ही सानू खूबसूरत बनाउणा पैणा है। किस आदमी दी जिंदगी दे विच मुश्किलां नहीं हन, अगर असीं अपनी जिंदगी दीआं मुश्किलां नूं वेख के डर जावांगे ना तां ओह कायरता होएगी, ओह जिंदगी दे विच नाकामयाबी होएगी। अगर जिंदगी दे विच आउण वालीआं मुश्किलां नूं हस के असीं कबूल करांगे, उहनां नूं दूर करन दी कोशिश करांगे, उहनां नूं दूर करन दे रस्ते लभांगे, उहनां नूं दूर करन दे लई अपने दृढ़ निश्चय दे नाल मेहनत करांगे जिस वी तरां दी करनी चाहीदी है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते।
1: क्या बात है समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी। समोसे मिलते विद चटनी, क्या उद्दे खाने जी करन लग पैंदा आ। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुन दा विरासत रेडियोलॉजी 3056 ईयर ते हो जी आ जाओ। काफ़ी लंबे समय तो होल्ड ते सीगे, माफ़ कर देना। सो लाइना होल्ड करनियां पैंदियां आने वाले दिनां विच। आपां अपने ही स्टूडियो विच पहुँच जावांगे, सारे ही अपने स्टूडियो अपने ही हन स्टूडियो, ते उहदे विच बैठ के टीवी ते भी प्रोग्राम करिया करांगे, रेडियो ते भी प्रोग्राम नाल नाल करिया करांगे तुहाडे वास्ते। सो सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक सानूं सुणिया करो। साडा तुहाडा साथ सदा ही रहेगा ते असीं आवाज़ बन के तुहाडे लई बैठे हाँ। जो हैगा उही कवर करन दी कोशिश करांगे आने वाले दिनां विच। मैं इह वी विशा लैके आना बई फूड बैंक कि खुले चाहिए आ कि बंद होने चाहिए आ, किन्ने क चाहिए आ। जे आप फूड बैंक खोल के अपना पैसा कमा कमा के उन्होंने दे जावे ना, फिर सरकार ने कख नहीं करना। सेवा करनी बड़ी जरूरी होंगी आ, पर सरकार खुश होंगी एक होर खुल गया, सानू कुछ करने की लड़ नहीं, तो उन्होंने खाना तो मिल ही जाना। सो जॉबा लेके आवो, जॉब्स फूड बैंक तो बंद होने चाहिए हैं, लोगों को लोड़ ना पवे उसके करजाण की। पर जे अपने काम कर पैसे वधाण, जिहड़े ठगियां मारदे हन कंपनियां बंद करके भज जांदे हन, उहनां ते नत्थ पाण। कोई ऐसा सिस्टम लैके आन, इंश्योरेंस लैके आन, जे कोई कंपनी बंद हो जाए इंपलॉई दे पैसे ना मरन। इधर प्रोग्राम होने चाहिए, साढ़े सो कॉल्ड सिलेक्टेड लीडर जिहड़े हन उन्होंने इधर काम करने चाहिए हैं। सो इस साडा अज का प्रोग्राम, सारे स्पोंसर वीरां भैणां का बहुत बहुत धन्यवाद। रब तुहानूं राजी खुशी रखे, चढ़दी कला विच रखे। मेरे वास्ते सारे ही अपने हैं, जिहड़े माड़े हैं चंगे बनाने की कोशिश करो, जिहड़े चंगे हैं उन्होंने साथ देने की कोशिश करो। तो रब कित्थे मिलता, तुहाडे घर विच हैगा। माँ प्यो की सेवा रब की सेवा हुंदी आ, करिया करो जरूर, रब तुहानूं मिल जाता। एक एक करनी ना भुल्यो। मेरे बाद गलबात करनी हो 416-451। बाय बाय, हैव अ गुड।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our show.

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्दे नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ PUNJABILEHRAN। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

$1 बिलियन खर्च रहे हैं भाई हम मुंडे की शादी की तरह फालतू में। $1 बिलियन सिर्फ 14 मैच लिए खर्च रहे हैं असी। हमेशा ही वर्ल्ड कप के मैच जिते भी हुए हैं घाटे का सौदा होया, प्रॉफिटेबल कदे भी नहीं होया है। कई होर खबर ने जिन्हें मैं गल करूँगा, तो एक तो खबर यह कि $1 बिलियन अग किवें लाई जाए। अज के प्रोग्राम से असी तुहानूं दसांगे किस तरह 14 मैचों के उपर $1 बिलियन सरकार कहती है साढ़े अग लग जानी है। स्टूडियो से नंबर 905-6-73-33-37 से तुम साढ़े नाल गलबात कर रहे हो और संतोष जी भी साढ़े नाल आए हुए हैं। तो मैं जो सोच रहा से भी कोई कोई सन कहूगा जी मैं पहुँचा हुआ जी फलानी जगह टमकानी जगह, कदे कदे मन करता हुंदा ना भी कितों कितों लोग कॉल करते हैं। तो अज जो हजे साड़ी आवाज़ पहुंची नहीं उसे लेट है डिले सिस्टम च, पर या आजूगी हमने कॉल आजूगा 905-6-73-33-37।

तेरी पहली और आखिरी वफा है तू, चाह है तुझे, चाह है तुझे, चाह से भी पढ़कर मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान, इंतहा है तू।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: और रॉकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: पैसा ये पैसा ये पैसा नागपाल साहब ये पैसा पैसा पैसा कर दिए पैसे की लगा दू ढेरी। अच्छा तुम ये दसो आम तौर पर बंद ये लगता हूँ मोस्टली तौर पर ना जो साढ़े भी दिमाग के आए तो सूँ ये लगता कि यार भी सरकार नूं की फायदा वा जे तुसीं कहिंदे हो कि सरकार ग्रांट दे रही है सरकार नूं की फायदा सरकार ने तो उदों जदों दित्ते सीगे 40-40 हज़ार बाद चों कहिंदा कि वापस कर दो इहदे च तां कोई वापस वुपस वाला जां इहदे च कोई कैच तो नहीं है कि जो घुंडी तो नहीं जी कई बार हों कि कोई हिडन घुंडी होंगी है कई बार सूँ लगता हूँ कि यार हरेक चीज़ के भी कोई ना कोई किसी का कोई तो फायदा होगा कौन किसी को दिता है ना इदा पैसा सो सरकार की भी कोई घुंडी है भी वो चाहती है कि पर उन्होंने को कुछ नहीं तो कोई देता कुछ नहीं रहा आ ही रहा थोड़े को।
1: अब आप ये देख के चले चाइल्ड बेनीफिट है कोई कुंडी नहीं है उसके अंदर
0: चाइल्ड बेनिफिट तो मिलता
1: हाँ जी उसमें इस वाले काम में भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट देख के देखने के बाद फंडिंग देती है जी नोटिस ऑफ असेसमेंट डिपेंड वेरिएशन डिपेंड करता है अगर आपकी इनकम ज्यादा है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे यस तो फायदा नहीं है आपको सिंगल है तो भी फायदा नहीं है।
0: अच्छा
1: और डॉक्यूमेंट्स का लगते हैं बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नोटिस ऑफ असेसमेंट दे इनकम जितनी कट आएगी कम आएगी
0: कोई हिडन चीज ना नहीं है जड़ी असी पूछनी ना भूल जाइए तुसी दसनी भूल जाओ जां तुसी कहो तुसी केड़ा पूछया सीगा कोई हिडन
1: नहीं इसके अंदर नहीं है। यहां पे एजुकेशन के लिए फंडिंग करेगी गवर्नमेंट आपको बिजनेस के लिए फंडिंग नहीं मिल रही आपको हां
0: एजुकेशन के लिए
1: पेरेंट्स भी पैसा लगाते थे ना हमारे ऊपर वो हमको टीका रखते थे हमारे लिए कि टीका बजाएंगे पेरेंट्स नहीं रखते थे ना अच्छे स्वभाव से वैसे गवर्नमेंट हमें माता पिता की तरह है
0: नहीं अगे असं पता की अगे असं सुन देंगे जिम्मे सा बच्चे यूनिवर्सिटी चले गए उन्होंने उस मिल जाती कई बार मिलती कई बार नहीं भी मिलती थी ये kind of उदां दी हैगी है जिहड़ा हैगा एक तरह दी
1: सिमिलर
0: ही उदां दी फंडिंग है पढ़ाई लई दे रहे
1: हां पढ़ाई के लिए दे रहे
0: हैं जरूरी नहीं कि तुसी हुण पढ़दे हो ताही तुहानू मिलनी है तुसी नहीं भी पढ़दे तां भी तुसी मतलब पढ़दे दा मतलब ए है कि जे तुसी हुण यूनिवर्सिटी जा रहे हो ये नहीं भी तुसी यूनिवर्सिटी जाने हो ताही तुहानू फंडेगा जे हुण तुसी सपोज करो कि मैं ट्रक चला रहा जां मैं रेडियो कर रहा जां मैं कोई होर टैक्सी चला रहा जरूरी नहीं तुसी जिहड़ा मर्जी काम करी चलो कोई भी बंदा किसी भी उम्र दे विच लै सकदा इहदा फर्क इह हैगा
1: बिल्कुल जी यही चीज है एज लिमिट की कोई देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ एज गवर्नमेंट की पॉलिसीज में
0: गवर्नमेंट ये नहीं सोचती भी जा रहे हुन बाबा 70 साल दा नहीं पढ़ के हुन की लेना मैं
1: चार्टर ऑफ राइट्स फ्रीडम की कोई चीज है इस देश में
0: वो कदे पढ़ो
1: स्किल डेवलपमेंट है।
0: अच्छा ये फिर ये भी है कि एज के हिसाब नाल वो कहते भी ओके हुण जिहड़ा 65 साल का बंदा भी तू एच बैक का मामा भारा कम औखा एसी उसी का करना भी वह कितने फिर वो एज के हिसाब नाल कोर्स दिंदे ने
1: नहीं नहीं नहीं कोई भी अपना कोर्स ले सकते हो हाँ जी लेकिन ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करते हैं फुली ऑनलाइन सौखे जे कोर्सेज जो कि वो ट्रक भी चला रहे हैं हाउस वाइफ बच्चे मैनेज कर रहे हैं हाउस वाइफ ऊबर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग
0: कोई ऐसा एक्सपीरियंस होया कि कितने 7-8 साल 10 साल हो गए तुहानू करदे नूं ये कम कोई ऐदां दा एक्सपीरियंस होया कि फंडिंग मिल गई होवे वो कहे कि मेरे तो यार क्लियर नहीं होया है मैंने उन्होंने कहता कि फंडिंग वापस करो अब आज तक
1: अब
0: सच दस्यो
1: बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो बताओ क्यों
0: हाँ।
1: आप मुझे बोलो जी मेरे को ये कोर्स करना है मैं बोलूंगा नहीं है हम बोलते जी 10 कोर्स हैं 5 कोर्स है चूज करो नहीं तो माफ करो।
0: अच्छा इन्हें दसां दे विचों तुसी चूज करो
1: उसमें मेजॉरिटी कोर्स कवर हो जाते हैं
0: ओके
1: जो सोखे जे ने फुली ऑनलाइन ने इजी टू पास ने असाइनमेंट्स एग्जामिनेशन नहीं है कि तो इस सामने कहो असी मेरे को अब बोलोगे एचवाई करना बोलूंगा जी कॉलेज जाना पड़ेगा पास होना पड़ेगा
0: नहीं हुण मेरी ये गल हो जी हो रहा जिहड़ी तुसी कह रहे हो सोखे जे कई बंदे कहते यार मैं जे आइल्स भी दूंगा तो मेरे 5 बैंड भी नहीं आने कई बंदे कहते हैं कि मेरे 5 भी नहीं आने है जब मेरे 4 बैंड आने भी की मैं कोर्स पास कर सकता कि वो भी कोर्स पास कर लेने के हो जाएगा उन्होंने तो भी
1: गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें लीनियंट है बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए क्यों
0: हाँ।
1: मतलब अगर बंदा जो नलायक है वो नलायक ही रहे
0: हाँ।
1: या उसको मौका मिले सीधा
0: मौका मिलना चाहिए
1: मौका मिलता
0: है दे रही है
1: गवर्नमेंट मौका ही
0: स्किल डेवलप कर रही है
1: किसी के लिए गाड़ी की इंश्योरेंस है कहीं भी पैसे खर्च कर सकते हैं 30 लाख डॉलर की फंडिंग है होती है ये। अब चलो दूसरी बात पे आते हैं अब गवर्नमेंट का बजट है $965 मिलियन जेंडर इक्वालिटी का जो देश के अंदर नहीं खर्च होना देश के बाहर खर्च हो रहा है
0: बाहर
1: एशियन यूनिवर्सिटी इन अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने 5 मिलियन दिया है वहां पे एजुकेशन के लिए 8.2 मिलियन दिया वियतनाम में जेंडर इक्वालिटी राइस की खेती में
0: उन्होंने
1: 965 मिलियन बाहर था बाहर जा रहा पैसा एजुकेशन में उन चीजों जेंडर इक्वालिटी पे
0: तो पैसा ये आप इथे रहने
1: तो ये तो इथे रहने हैं भाई हमारा जब पैसा बाहर जा रहा है थोड़ा अपने में ही लग सकता क्या अब रिफ्यूजीज पे 1 बिलियन लगा अकोमोडेशन में 1 बिलियन लगा है उनके हेल्थ केयर पे ठीक है और अब यूक्रेन की पॉपुलेशन है 37 मिलियन 30 बिलियन तो उनको चला गया मैंने डिवाइड करा दोनों का आपस में मतलब हर बंदे को वहां पे $810 कैनेडियन डॉलर मिलना चाहिए किस बात का मिलना चाहिए भाई तो गवर्नमेंट वहां पैसा इतना लगा रही 4 बिलियन एडिशनल
0: अपनी गवर्नमेंट जो बाहर ला रही है तो अपने जो बंद ने इतने रेंदे जो इतने सिटीजन ने जो पीआर ने परमानेंट रेजिडेंट ने वो कहते कि भाई तुम पढ़ लो तो भी असं दें
1: बिल्कुल जी
0: तुम लेने नहीं लेने मर्जी है
1: कैच नहीं है
0: बिल्कुल क्लीयर कट है ਕੋਈ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
1: ਗ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਹੈ, ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਈਕ
0: ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
1: ਹਾਂ, ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਮੇਂ ਅਪ ਟੂ $80,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਤੀ ਹੈ,
0: 80,000 ਦੀ,
1: 80,000 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਬਾਤ, $40,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 80,000 ਮੇਂ ਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ,
0: ਅੱਛਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ,
1: ਇਨਕਮ ਮੇਂ ਇਨਕਮ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ,
0: 437-264-31-75 ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, 437-264-31-75। ਵਕਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਸਚਨ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
2: ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਹੋਮ ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, 500, 1500 ਔਰ 2000 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੋਜਰਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਦਿਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਰੋਜਰਸ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੈਨੇਡਾ, US ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਈਫੋਨ ਔਰ ਸੈਮਸੰਗ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਹੈ 6478648000 ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਸੇ ਰੋਜਰਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਅਗੇਨ
0: 6478-6478-6478000। ਪੱਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਤੂੰ ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਵੇਂ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਕ ਏ ਗਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਅੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਤੂੰ ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 456-6161
2: Team Sidhu leke aaye ne Niagara Falls shehar de vich nave traditional townhouses with double car garage, four car parking, the builder de vallo free finished basement, extra rental income delay, price 5,25,000 525,000. Ehe traditional two story towns ek prime Niagara Falls location de taiyar ho rahe ne. Clifton Hill the actual Niagara Falls ton takriban 5 km dur. Closing spring 2027 2027 de vich. Ehe traditional two story towns 1750 square foot to leke 1800 square foot tak taiyar ho rahe ne. 3 to 5 bedrooms, 3.5 to 4.5 bathrooms, free finished basement from the builder, double car garage, total 4 gaddiyan di parking hai. Free 5 appliance package, free AC, free assignment clause, free upgraded quartz countertops, zero development charges. Price 5,25,000 Extended deposit hai, total 60,000 deposit kishtan de vich pay karna hai. Aaj hi team Sidhu nu call karo 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 Team Sidhu
3: ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ
4: ਅੱਜ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

0: चक्कर लगाओ.
1: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स. बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 से शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट. मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूजडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की की रोटी दा. ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशन से. डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग ऑल्सो अवेलेबल. कॉल एट 9057948111. सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपली इंडियन.
2: कैनेडा डे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम का सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन. हुणे ही कॉल करो 456-6161.
0: अकाल डक क्लीनिंग वाले पिछले 40 वर्षों तो साडी कमेंट जी

क्या बात है, की हाल चाल है? सब दे उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नू। वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी फ्राइडे जूनियर।

भी यार थोड़ी जी ज्यादा ही रीमिक्स भी लग रही है मैनू। यही है यार गाना, चलो यही सुन लो।

0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड। सो सिंपली इंडियन ते एक बार गेड़ा मार के आओ। अज दा साडा सारे दा सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है गेल फार्म वालों। गेल फार्म एंड प्रोड्यूस ते तुसी एक बार गेड़ा मार के आओ ते गेल फार्म ते थानू यार हर एक किस्म दी पनीरी मिल रही है। पहली गल तां डिक्सी ते किंग दे उत्ते लोकेटेड ने 14085 डिक्सी रोड 11 to 7 डेली खुलदे ने। थानू पनीरी सारी दी सारी मिल रही है। राम तोरी, लोकी, कद्दू, भिंडी, बैंगन सारी पनीरी ते पनीरी सिर्फ 249 $2.49 तो पनीरी है। बाकी इन्हां कोल सोयल मनूअर ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट फार्म फ्रैश देसी आंडे प्योर फार्म फ्रैश हनी यानी कि शहद ते फ्रैशली मिल कीता चक्की दा आटा होल वीट रागी बाजरा जवार फ्लावर दा। जाओ ते लोकल तुसी शॉपिंग करो एट गेल फार्म कैलडन 1085 डिक्सी रोड डिक्सी एंड किंग गेल फार्म ते तुसी जरूर गेड़ा मार के आओ ते एंजॉय करो। वधिया टॉप टॉप टॉप दी डील एट गेल फार्म।

0: यार गाना बड़ा सोहना क्या लिखिया है ते कलेर कंठ साहब तो गाँवे ही चलो है ही कमाल। सो बाई जी कहते नवी कॉलेज ये असी गाना बड़ा सुनिया है मदन जलंधरी लिखा हुआ है। वेरी गुड क्या बात है जे तू जिंदगी गुजार लेंगी साढ़े तो बगैर है भी असी कहड़ा तेरे बिना मर जाएंगे। प्रोग्राम पंजाबी लहरा 905-673-3337 नंबर है अपना 9056733337 ते गल्लां बातें थोड़े नाल बहुत खूबसूरत हो रही हैं हर रोज़ दे वांग ते प्रोग्राम नूं उम्मीद है कि तुसी भी खूब इंजॉय कर रहे हो। जे थोड़े फ्रिज स्टोव डिशवाशर वाशर ड्रायर अपलायंसिस दी रिपेयर होने वाली है तो याद रखो प्रदीप भाजी 647-622-3203 सब्जी मार्केट नूं याद रखो सब्जी मार्केट नाले रेस्टोरेंट है नाले ग्रोसरी स्टोर है बहुत खूबसूरत समान मिल रहा व्याहां वास्ते जागो पक्खियां तुसी तरह तरह दियां लो ते मुंडे दे व्याह दा समान नानके दादकियां दा समान कुड़ी दे व्याह दा सारा थोनू समान छज बाकी थोनू जागोआं चाहिए इत्थों मिल जाणगियां ढोलकियां रेंट करनी इत्थों कर लो हीलियम वाले बलून किसी भी बर्थडे पार्टी बच्चों की बर्थडे लई कार्टून बर्थडे स्पेशल लैटरस वाले बलून भी मिल रहे ने वैज नॉन वैज केटरिंग इतों कराओ जलेबी स्टेशन लाइव इन्हों को लगवाओ फिश पकौड़ा चिकन कबाब चिकन टिक्का 24 घंटे 7 दिन 24 आवर्स इंजॉय करो लोरमेल गेट 10 लोरमेल गेट सैंडलवुड मैकलॉगलिन या ब्रैमली एंड कंट्री साइड 10970 ब्रैमली रोड सब्जी मार्केट एंड गिल फार्म ने तो बहजा कराती अज गिलम फार्म वाले साढ़े नाल जुड़े अज डिक्सी अते किंग दे उत्ते गिल फार्म है 14085 डिक्सी रोड कैलेडन इन्हां कोल हर एक किस्म की पनीरी अवेलेबल है राम तोरी लोकी कद्दू भिंडी बैंगन बहुत सारी पनीरी $2.49 तो पनीरी है इत्थे फ्रैश देसी आंडे मिलते हैं फार्म का फ्रैश शहद हनी मिल रहा फ्रैशली मिल कीता चक्की का आटा होल वीट रागी बाजरा जवार फ्लावर ते बाकी सोयल मनूर ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट सारा समान इत्थे मिल रहा गिल फार्म 11 to 7 डेली खुले ने 14085 डिक्सी रोड डिक्सी एंड किंग कैलेडन 9059252300 नंबर है 905-925-2300 नंबर है 0389 हेलो
1: नंबर लगना मेरे को लिख नहीं है ये मेरे फोन ते भेज दो
0: तुहानू भेज दिने कोई गल नहीं
1: थैंक यू पुत्रा थैंक यू
0: सैटरडे नू बहुत ही कमाल दा सेमिनार होण जा रहा सुजन फेनल स्पोर्ट्सप्लेक्स कादा सेमिनार है किन्ने वजे सेमिनार की होवेगा हरजिंदर जी साडे नाल हरजिंदर जी वेलकम
2: थैंक यू जी सत श्रीकाल जी ने तुहाडे सारे प्यारे श्रोताओं नूं प्यार भरी सत श्रीकाल मैं जिहड़ा सैटरडे नूं सैमीनार होने जा रहा उहदे बारे शॉर्ट च आप जी नूं दस दिआं कि प्री प्लैनिंग ऑफ लास्ट एक्सपेंसिस जिहदे बारे साढ़े बहुत सारे कम्यूनिटी दे मैंबरस अवेयर नहीं हन असीं उहदे विच दिस विल बी एन एजुकेशनल सैमीनार फ्री सैमीनार है असीं लंच वी इंजॉय करांगे ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸੋ ਟੂ ਬਈ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਲਵਡ ਵੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬਰਡਨ ਹੀਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁਜ਼ਨ ਫੈਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਲੋਗਲਿਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਵੇ, ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸੱਦਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ